बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तां में, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं है, कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक याद है दिल की धड़कन अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से

तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:06।
1: बॉलीवुड।

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट,
4: नो इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with henna speedy easy hair color. Made in Italy.
5: Namaste.
6: Hola.
5: Assalamualaikum.
7: Bonjour.
8: Ni hao.
7: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
9: InsuranceMarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae.

0: यार फिल्म इतनी बड़ी स्केल की है कि सब कुछ इवन द ट्रेलर तिथि वगैरह टाइम वाइम देख के ही रिलीज कर रहे हैं.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: कल रात को 1 बजे यानी कि 1 AM दिस मॉर्निंग द ट्रेलर फॉर रामायण रिलीज्ड. सो या आई मीन दैट वाज इंडिया टाइम. तो कुछ 3-4 घंटे पहले ये ट्रेलर रिलीज हुआ. इसको मैं आपको सुनाता हूँ. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस.
2: तुम्हारा नया राजा

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग, इट्स 7:26 ऑन द क्लॉक एंड अभी से 36 डिग्रीज सेल्सियस, नाइस हॉट वार्म सनी स्टार्ट टू दिस डे। इट्स 62% ह्यूमिडिटी, विंड्स ब्लोइंग एट 10 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 40, लोज ऑफ 35 डिग्रीज सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
4: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
0: ये है Sid on the Big Breakfast, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सजनी छोड़ो, आज ट्रेलर पे दिल आया कि नहीं आपका?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: हमारे पुराने दोस्त निखिल फोन लाइन पे मौजूद इस वक्त. निखिल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग ऑन दिस थर्सडे?
2: गुड मॉर्निंग.
0: सब बढ़िया?
2: बढ़िया.
0: कैसे बराए?
2: एकदम मस्त है.
0: ये बताओ कि रामायण का ट्रेलर देखा कि नहीं? 4 घंटे पहले ही रिलीज हुआ.
2: रामायण का ट्रेलर देखा. सीरियसली
0: गुजबम्स
2: आ गया.
0: गुजबम्स मोमेंट्स हैज कम टू निखिल. मतलब फेवरेट चीज क्या लगी इस रामायण?
2: इनोसेंट फेस है ना, इनोसेंट फेस.
0: हाँ.
2: वो उसमें मतलब क्या बोलूँ, क्या ही बोल सकता हूँ उसके बारे में. मतलब रणबीर कपूर को किसी भी एक्टिंग में डाल दो वो फिट हो जाएगा, पर ये रोल में वो उसका इनोसेंट फेस जो है वो माइंड ब्लोइंग.
0: फेस तो इनोसेंट है यार निखिल, लेकिन व्हाट अबाउट द डायलॉग? सुनाता हूँ मैं आपको एक बार एक लाइन जो ट्रेलर में है.
3: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए मुझे स्वीकार.
0: डायलॉग डिलीवरी के बारे में क्या कहना है यार? मतलब इट्स मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है.
2: क्लास.
0: वेरी गुड. चलो वेरी गुड निखिल, आपने बोल दिया तो बोल दिया. ट्रेलर इज आउट एंड निखिल रियली लव्स इट. बट वन थिंग दैट एवरीबॉडी इज गोना डू आज, और सारे काम छोड़कर जाके ट्रेलर देखो यार. इतने सारे हजारों करोड़ रुपए इस पे बना दिए. छोटी सी आई थिंक नॉट इवन अ स्मॉल कैप, एक मिड कैप कंपनी खोल सकते हो इतने पैसे लगा दिए इस फिल्म के ऊपर. बट निखिल चलो बताओ आज कौन सा गाना सुनने के मूड में आप?
2: मैं छावा मूवी का तूफान सुनना चाहता हूँ. तूफान लाना चाहता हूँ आज.
0: मतलब कुछ ऐसा होने वाला है कि तूफान एक्सपेक्ट कर रहे हो या ये आपको लग रहा है कि?
2: ऐसे मुझे इंटीमेट हो रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है. मतलब ये
0: अच्छा तूफान होने वाला है.
2: अच्छा तूफान आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है.
0: कुछ आज अब सारे महीने का टारगेट आज मीट कर लोगे ऐसा कुछ फील आ रहा है?
2: नहीं नहीं, टारगेट तो होने वाला है. लाना चाहता हूँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक अभी कुछ अच्छा होने वाला है.
0: टारगेट मीट तो नहीं हो रहे कंपनी बॉस
2: नहीं, सभी के साथ अच्छा
0: टारगेट खुद बन गए यार. टारगेट मीट नहीं हो रहा, सब खुद ही टारगेट, हम खुद ही बन गए. बट चलो निखिल फिंगर्स क्रॉस्ड, आज सारे के सारे सब कुछ फोड़ दो, आप तूफान लेकर आ जाओ. छावा फिल्म का ये गाना निखिल ने रिक्वेस्ट किया, पता नहीं कहाँ से खोज के आई है, लेकिन हाँ आज आपको लग रहा है तो डेफिनेटली तूफान आएगा. और अगर आया तूफान तो प्लीज कॉल करके बताना कल. ठीक है?
2: सच में
0: हियर इट इज, आया रे तूफान फ्रॉम छावा.

0: And talking about Didi, kuch len den ki baat ho jaye on this 30th of July.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Pehli nazar subah aankh khulte hi agar markets pe hoti hai, then yeah, you're not alone. That's what most people do. And markets mein uthal puthal itna ho raha hai aajkal, especially when it comes to gold rates. Kya chal raha hai aaj? 24 कैरेट एक ग्राम सोना 491.5 या 491.5 फॉर 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड. वहीं 1 ग्राम 22 कैरेट सोना आपको पड़ेगा 455 दिरहम्स में. एक्सचेंज रेट फॉर द यूएई दिरहम इंडियन रुपी 25.94 डाउन 6 पैसे फ्रॉम 26 यस्टरडे 25.94. पाकिस्तानी रुपी 75.67, बांग्लादेशी टाका 33.65. इस गाने का नाम है तबाही, फिल्म का नाम टॉक्सिक, विशाल मिश्रा, राजशेखर. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:05।
1: बॉलीवुड।

0: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलखूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
5: Spin big with Big Ticket.
6: 20 million dirham grand prize.
5: 1 million dirham big spin chance.
6: 5 consolation prizes and weekly e-draws.
5: Buy now at bigticket.ae.
7: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
10: इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। एक तरफ जहां पर समर के टेम्परेचर्स हैं 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस डे, वहीं एनसीएम ने इशू की है एक ऑरेंज अलर्ट क्योंकि हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स हैव अफेक्टेड सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दुबई सिटी, टाउन स्क्वायर, अलेन दुबई रोड पर भी बारिश हुई एंड डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स रिड्यूस विजिबिलिटी कहीं कहीं पर होने वाली है। सो इफ यू हेडिंग आउट, ड्राइव केयरफुली, स्लो डाउन ड्यूरिंग हैवी रेन एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वेदर एडवाइजरीज।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: वन एंड ओनली सॉन्ग इन द हिस्ट्री ऑफ सॉन्ग राइटिंग, इसमें टखने टखने टखने वर्ड टखने में पायल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: ऑलराइट, 8:49 ऑन द क्लॉक, इट्स टाइम फॉर द बिग बॉलीवुड क्विज. आज सोनू निगम का बर्थडे है, 30th of July, इसीलिए मैं आपको एक ऐसे फिल्म के कुछ बंच, लाइक नॉट जस्ट वन, एक डायलॉग से बात नहीं बनेगी, इतनी बड़ी कल्ट क्लासिक फिल्म है ये, इतनी बेहतरीन विंक विंक एक्टिंग की थी सोनू निगम ने इसमें कि आगे चल के इस बिकम लाइक अ प्रॉपर कल्ट क्लासिक लाइक इट यूजुअली हैपन्स ऑन यूट्यूब स्पेशली. एंड जब भी आपका मूड खराब होता है, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को देखो. नो मैटर वॉट यू गोइंग थ्रू इन लाइफ, कैन बी वर्स देन दिस पर्टिकुलर थिंग. दैट इज वॉट द एंटायर यू नो इमोशन इज बिहाइंड दिस फिल्म. सो मल्टी स्टारर ऑनसॉम्बल स्टार कास्ट की कौन सी वो फिल्म थी जिसमें सोनू निगम ने ये कुछ कहा था?
2: अतुल, हर इंसान को कभी ना कभी भगवान को मानना ही पड़ता है यार.
3: ओह गॉड, कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ.
2: विजय भी मारा गया, विजय भी मारा गया.
3: विवेक बोलो भैया. विकी भाई, विकी विकी बोलो.
2: मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो भैया.
3: अच्छा भैया, आप आ गए, थैंक गॉड. मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो.
4: क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें?
3: इसने.
0: इट्स माय फेवरेट पार्ट. या सो या दैट इज सोनू निगम. कौन सी वो फिल्म में उन्होंने ये सब कुछ कहा था? देयर वाज अ मेलोडी ऑफ द डायलॉग्स ऑफ सोनू निगम. अगर आपको पता है फिल्म का नाम तो मुझे कॉल करो 800-1062 पर. 800-1062, यू कुड बी टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. दिस is the big breakfast with me, Sid. Good morning.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए, फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, ब्रेन ऑलरेडी ऑन हॉलिडे, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मोर, इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए।
3: नमस्ते,
4: ओला,
3: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University, where the world comes to learn.
1: Big 106.2. That's My Song by E-And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में ये नहीं पूछते हम लोग कि आपने देखी है कि नहीं देखी. यू हैव टू आस्क कितनी बार देखी.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वन एग्जांपल इज ऑफ कोर्स सूर्यवंशम सूर्यवंशम, और दूसरा जो है उसका मैंने आपको एक नहीं बल्कि चार पांच डायलॉग्स इनटू वन मॉन्टाज सुनाए थे लास्ट टाइम. गॉट मितुल विद मी ऑन द फोन लाइन. मितुल भाई क्या हाल चाल है?
2: बस फर्स्ट क्लास. गुड मॉर्निंग भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल
0: गुड मॉर्निंग. आपको भी अच्छे नाइस एंड रिलैक्स लग रहे हो. क्या खाया आज नाश्ते में?
2: सुबह अभी जस्ट ऑमलेट एंड चाय.
0: ऑमलेट एंड चाय, अच्छा खासा. यू फील वेरी रिलैक्स्ड ऑन दिस थर्सडे मॉर्निंग. ऐसा लग रहा है आपसे बात करके मैं खुद भी रिलैक्स हो रहा हूँ यार. लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसमें बिल्कुल कोई रिलैक्सिंग मोमेंट नहीं था. इनफैक्ट यू नो इसके एक्शन सीक्वेंसेस वर इंस्पायर्ड बाय क्लासिक हॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2, मिशन इम्पॉसिबल 2.
2: और इसमें भी इतना सारा नहीं था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन.
0: नहीं नहीं नहीं,
2: आई लोग ने दिखाया
0: है. आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार. ये सब मिशन इम्पॉसिबल, टर्मिनेटर, ये सब क्या है इस फिल्म के सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. पानी कम चाय. कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं?
2: इसे जानी दुश्मन, एक अनोखी प्रेम कहानी.
0: किसने मारा तुम्हें? इसने. आई थिंक सोनू निगम को कोई तो अवार्ड इस फिल्म के लिए मिलना चाहिए यार. व्हाट डू यू थिंक?
2: एक्चुअली ही डिड इट एटलीस्ट 5 फिल्म, तो उसमें एक पिक्चर में तो अवार्ड मिलता ही है उसका इसमें.
0: या आई डिड सम रिसर्च आल्सो के ही डिड आई थिंक 3 फिल्म्स. दो और फिल्में इस फिल्म के बाद उन्होंने की, एंड वन वाज लव इन नेपाल, एंड देन देयर वाज आल्सो काश आप हमारे होते इन 2003. ये तो सिनेमा हॉल में रिलीज हुई वाली मूवी की बात मैं कर रहा हूँ. बाकी आई थिंक जो शेल्फ प्रोजेक्ट तो अलग ही थे उनके, बट इनफ टू काइंड ऑफ डिस्करेज फ्रॉम एक्टिंग फर्दर. बट आई थिंक द मोस्ट लेजेंडरी फिल्म वॉज जानी दुश्मन. लेट्स टॉक अबाउट जानी दुश्मन. आपने कितनी बार देखी ये फिल्म?
2: ऑलमोस्ट लाइक इफ यू कैन से एवरी वीकेंड इंडिया में जानी दुश्मन था. एंड सोनी मैक्स पे अपना अमिताभ बच्चन का विच मूवी इट वॉज?
0: सूर्यवंशम.
2: सूर्यवंशम खीर वाला.
0: खीर वाला सीन और ये जानी दुश्मन में तो खीर के बहुत सारे सीन थे. मतलब इसमें तो, एंड खास करके जब वो सुहागरात वाला सीन होता है, मतलब दैट इज लाइक इट इज जस्ट एपिक. इसका इससे अच्छा सीन हुआ ही नहीं है कभी बॉलीवुड में.
2: नहीं
0: ना, आई थिंक एक खौफ बैठ गया था.
2: सारे सीन है, वो बंदा भाग रहा है, भागते भागते सडनली उसके पास बाइक आ रही है जानी दुश्मन मूवी में.
0: राइट. और मतलब
2: वोट आ रही है, मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ से सब जा रहा है. इतना तो मैंने कभी देखा भी नहीं, कोई भी मूवी में नहीं देखा.
0: सब कॉन्शियसली सारे जो देसी दूल्हों के माइंड में एक खौफ बैठ गया था यार कि सुहागरात के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे साथ, जो कि जानी दुश्मन में
2: टर्मिनेटर को पीछे कर दिया था मूवी में रंग चेंज करने में.
0: लाइक आई सेड, मिशन इम्पॉसिबल, ये टॉम क्रूज पॉम क्रूज तो कुछ भी नहीं है हमारे सोनू निगम के सामने. आज सोनू निगम का बर्थडे है, एंड ऑन दिस ओकेजन यू हैव वन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज. कभी जिंदगी में आपने नहीं सोचा होगा कि जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी की वजह से आप दो टिकट जीतवाएगी. बट ऐसा हुआ है मेरे भाई, ऐसा हुआ है. और कांग्रेचुलेशंस, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे. या
2: थैंक यू सो मच.
0: टेक केयर. दैट इज मितुल, हमारे आज के विनर हैं. एंड बॉलीवुड बिग बॉलीवुड क्विज हम लोग रोज सुबह खेलते हैं. हैप्पी बर्थडे सोनू निगम. बिग 106.2.

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: Big Weather Update. Brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: It's 9:15 and the weather is in the spotlight once again. 3rd of August tak unpredictable weather rahega, kabhi barish to kabhi ole bhi pad sakte hain. That's what the NCM has said. Visibility reduce hone ke chances hain. In fact, I was seeing a Masafi mein hailstorm hua in the past 24 hours. So be very very careful, drive safely. Right now it is 37 degrees Celsius, humidity at 48%, winds blowing at 8 kilometers per hour.
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज। अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।
3: Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 2. The Beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: बहुत ही बड़ा वाला टॉकिंग पॉइंट है आज वेदर, बिकॉज देयर इज एन ऑरेंज अलर्ट दैट्स बीन इश्यूड बाय द एनसीएम. अनप्रेडिक्टेबल अनस्टेबल वेदर टिल द 3rd ऑफ ऑगस्ट. काफी बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर, ओले भी पड़ सकते हैं. 38 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 43%, विंड ब्लोइंग एट 5 किलोमीटर्स पर आवर, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी कहीं कहीं पर हो सकती है. प्लीज ड्राइव सेफली.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: word. Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop. Listen to her every day.
1: Mugambo! खुश हुआ।
2: लोगों का ये मानना है कि जब वो किसी डेट के साथ जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, अगर होता भी है खाना बच जाता है, वो लेफ्ट ओवर्स घर नहीं लेकर जाते बिकॉज दे थिंक कि इम्प्रेशन खराब होगा। राइट नाउ आई गॉट परीन विद मी एंड आप डेट पे गए किसी लड़की के साथ, आप दोनों ने खाना ऑर्डर करा एंड खाना बच गया, तो क्या आप उसे पैक करा के लेके जाओगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इसको इम्प्रेस करना है तो मैं पैक नहीं कराऊंगा?
3: अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो मेरा तो अरेंज मैरिज हो रहा है।
2: आपने बोला आप लोग गुजराती फैमिली में, तभी समझ गए लेफ्ट ओवर का एक्स्ट्रा पापड़ भी ले जाएंगे।
3: मैम पापड़ तो ठीक है, सॉस भी नहीं छोड़।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
4: It is 10:24 on the clock. Let's start with the capital, Abu Dhabi. आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक अभी भी मिलने वाला है going towards Banias heading north AE11 पर, and this is Mafraq industrial area. इसके अलावा everything else seems to be absolutely smooth going. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. You'll find a bit of congestion at 611, and this is way up north. Al Zubair Residential से heading south going towards Al Jalail. You'll find Emirates Industrial City की तरफ जाता हुआ traffic at 611 पर. Then there is also 311 पर, the usual as you get out of city center Zaya after safe zone. You'll find traffic almost all the way till city center Mirdif. यहाँ पर 6 से 8 मिनट extra लेकर चलिए. Then there's E11 Alnada interchange 1 is also busy as usual. इसके अलावा everything else seems to be smooth flowing. In case you spot something, give me a call. 800-1062 is my number.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 10:38 on the clock on this Jumarat Thursday, 30th of July. And let's talk a bit about the gold rates this morning.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: जब कभी सोने के दाम गिरते हैं बड़खड़दार, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि द फेड रेट्स हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड एंड इसकी वजह से गोल्ड रेट्स थोड़े से ड्रॉप हुए हैं आज सुबह. बिकॉज आप जानते हैं, जब भी फेड रेट्स ऊपर नीचे होते हैं तब गोल्ड रेट्स पे इफेक्ट होता है. बिकॉज गोल्ड इज जनरली कंसिडर्ड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नॉट जस्ट हियर इन द यूएई बट अराउंड द वर्ल्ड, एंड स्पेशली हम देसियों के लिए तो क्या ही कहने. बट या गोल्ड प्राइसेस इन दुबई ड्रॉप्ड आफ्टर द फेड का डिसीजन टू लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड. चार दिनों से ही गिरे हैं, लेकिन गिरे हैं जरूर. कल क्लोजिंग हुई 491.5 पर, एंड आज सुबह 24 कैरेट एक ग्राम सोना आपको 487.5, ड्रॉप बाय 4 दिरहम्स. वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 451.5 एंड कल क्लोजिंग हुई थी 455 दिरहम्स पर. या दैट्स हाउ अ ड्रॉप इन द गोल्ड रेट वुड साउंड लाइक. गोल्ड रेट एक्सचेंज रेट जब गिरता है तो ऐसे साउंड होता होगा ना. दिस सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: 106.2.

0: अच्छा तो हम चलते हैं, लेकिन दो घंटे बाद फिर मिलते हैं।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: आपको पता है ना, आजकल दोपहर में भी मैं ही आपको आका एंटरटेनमेंट करता हूँ, एक से लेकर पांच के बीच में द बिग मिक्स विद मी सिड टिल द 14th of August 1 to 5 PM ऑन बिग 106.2। बट जाते जाते आपको याद दिला दूं, इफ यू नीड अ रेंटल कार एनी टाइम, सिया फ्रॉम सेल्फ ड्राइव इज अवेलेबल 24/7 एंड इवन अंडरस्टैंड्स 40 languages, including Gen Z texting. You can search, choose, and book your perfect car in just a few minutes. Try Sia today at selfdrive.ae. That's selfdrive.ae. I'm going to be taking your leave, but only for the next 2 hours. You can follow us on our Insta page, 106.2 Big FM. वहाँ पर बहुत कुछ होता है, lots of poll questions and trivia questions that you can answer, take part in some quizzes out there. Also, you know, enjoy the BTS behind the scenes action that we post out there. 106.2 Big FM, follow नहीं करते तो follow कर लीजिए. I'm Sid Seth, SIDSETH. I'll see you in 2 hours. Till then, enjoy. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: व्हाट इफ योर इंश्योरेंस गेव यू मनी बैक अप टू 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: That's right. Pump it up.

0: जाएगा।
1: दिस इज बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 1 to 5 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट .ae। To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड आफ्टरनून 1:06।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: टेम्परेचर तो वही 39-40 डिग्रीज सेल्सियस एज यू वुड एक्सपेक्ट, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एन ऑरेंज अलर्ट हैज बीन इशूड बाय द एनसीएम एंड हैवी रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स डस्ट स्टॉर्म्स हैव अफेक्टेड सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दुबई सिटी टाउन स्क्वायर अलेन दुबई रोड पर बारिश हुई, विजिबिलिटी रिड्यूस्ड एट सर्टेन एरियाज। सो इफ यू हेडिंग आउट ड्राइव केयरफुली, स्लो डाउन ड्यूरिंग हैवी रेन एंड स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वेदर एडवाइजरीज टुडे।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, The Beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Listen to her every day.
3: Mugambo, खुश हुआ।
4: लोगों का ये मानना है कि जब वो किसी डेट के साथ जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, अगर होता भी है खाना बच जाता है, वो लेफ्ट ओवर्स घर नहीं लेकर जाते, बिकॉज दे थिंक कि इम्प्रेशन खराब होगा। राइट नाउ आई गॉट परीन विद मी, एंड आप डेट पे गए किसी लड़की के साथ, आप दोनों ने खाना ऑर्डर करा एंड खाना बच गया, तो क्या आप उसे पैक करा के लेके जाओगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इसको इम्प्रेस करना है तो मैं पैक नहीं कराऊंगा?
5: अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो मेरा तो अरेंज मैरिज हो रहा है, तो यू नो द नेक्स्ट आंसर, मैं और मेरी बेबी दोनों पैक करवा
4: देते। आपने बोला आप फ्रॉम अ गुजराती फैमिली में, तभी समझ गए लेफ्ट ओवर का एक्स्ट्रा पापड़ भी ले जाएंगे।
5: मैम पापड़ तो ठीक है, सॉफ्ट भी नहीं
4: छोड़ा।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: Hey, jaldi hata, tera khatana. Chal hata. Arey jaldi hata.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: It's very close to lunchtime and halaki zyada koi traffic nahi hai. Halka bulka traffic you'll find at Sheikh Zayed Road heading north after Media City, and a bit getting into city center Mirzif heading north going towards Sharjah from Dubai. Lekin be careful of the weather update. Aaj NCM ka orange alert hai. It might start raining. Visibility might get affected at certain areas, so be careful. In case you spot something, the number is 800-1062.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: कण के
1: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
2: बिग 106.2 6.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. Plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: एनसीएम ने कह दिया है कि अगस्त 3 तक देयर इज गोना बी अनप्रेडिक्टेबल वेदर, इज गोना बी हैवी रेन्स अराउंड एज वेल, लॉट्स ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, एंड ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, डस्ट स्टॉर्म्स के लिए। सो व्हाटएवर यू डू, आज कहीं पर भी आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव सेफली। इट इज राइट नाउ ऑन एन एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी एट 60-65%.
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me.
2: Big 106.2.
8: Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2.
2: The beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: It is Sonu Nigam's birthday today and aap jante hain we are the beat of Bollywood. So how can we not celebrate? Aaj subah maine dhoonda kahin se ki Sonu Nigam ki ek film jo meri bahut hi favorite hai and I am very very sure ki aapki bhi favorite hai. Actually ye subah baat sabit ho gayi because got overwhelming response. Pucha tha ki ye film jiska main ek bunched up like a montage of Sonu Nigam lines jo main aapko suna raha hu. Ye kaun si ensemble cast लेटर ऑन कल्ट क्लासिक बनी फिल्म का ये मेडली ऑफ डायलॉग्स है तो सुनिए जरा.
2: अतुल, हर इंसान को कभी ना कभी भगवान को मानना ही पड़ता है यार.
3: ओ गॉड, कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ.
2: विजय भी मारा गया.
3: विवेक बोलो भैया. विकी भाई, विकी बोलो.
2: मुझे बचा लो भैया.
3: अच्छा भैया, आप आ गए, थैंक गॉड.
1: एंड माय फेवरेट, वेट फॉर इट.
3: मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो.
4: क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें?
3: इसने
1: जितने दर्द से इसने सोनू निगम बोल सकते हैं और कोई नहीं. अगर आपको फिल्म का नाम पता है तो सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन 0543091062. दैट्स द व्हाट्सएप नंबर. प्ले फॉर प्राइड, नॉट फॉर प्राइज. यार सुबह ऑलरेडी मैं प्राइज दे चुका हूं. बट यार सोनू निगम का बर्थडे है, हाउ कैन वी नॉट लिसन टू दिस नाउ क्लासिक सॉन्ग फ्रॉम परम सुंदरी. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. गुड आफ्टरनून.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 3:06।
1: बॉलीवुड।

0: Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamu alaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
7: Listen to her every day.
8: Mugambo! खुश हुआ
9: अरे वो एक्सपायरी डेट बेसिस के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी
10: नहीं ऐसा नहीं है सम प्रोडक्ट्स यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट पर अचार हो गई चावल हो गए तेल हो गया घी हो गया आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव
9: सी आई डोंट नो वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे
10: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो उसमें फंगल भी आया है And my wife has suffered a lot because of that. So yes, bread is definitely a no-go. So expiry means expiry.
9: तो ये तो यहाँ आके चेंज हुआ होगा आपका thought process.
10: Definitely.
9: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है सही है खा ले कुछ नहीं होगा
10: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है
9: I know मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का
10: ना इम्यूनिटी का राज वही है
11: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
11: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
14: Good afternoon. There's a 42 degrees Celsius temperature across the UAE on an average, but an orange alert has been issued because बारिश पड़ सकती है. Unstable weather is to be expected till the 3rd of August. कहीं कहीं पे तो ओले भी पड़ गए हैं. For example, Masafi में very heavy rains and strong winds. So be careful. Visibility also might get affected in certain areas. This is the Big Mix with me, Sid.
11: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

30th जुलाई आज मुझसे शादी करोगी का 22nd बर्थडे है. एंड इन रिसेंट इंटरव्यू अनीस बाजमी सेड, आई मीन मेकर ऑफ द फिल्म, सेड दैट आज की डेट में अगर ये फिल्म बनी होती तो मुझे काफ़ी कट्स एंड चेंजेस करने पड़ते, बिकॉज ऑब्वियसली यार वो ब्रांड का जो ह्यूमर है वो आजकल तो चलता नहीं है. आई थिंक ऐसा हो गया ना कि वी काइंड ऑफ फाइंड रीजंस टू काइंड ऑफ बी एंग्री विद ईच अदर एंड आर सेल्व्स. थोड़ा टॉलरेंस लेवल लोगों का कम हो गया है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर. दैट्स व्हाट I feel. I really miss the 90s ka humor. Yeah. I don't know about you, but if a film like Mujhse Shaadi Karogi releases today, what do you think? I mean, would it be allowed? I don't think the CBS FC ke paar hi nahi hogi wo film. Yeah. Jab Spider-Man mein teen cuts unhone dal diye, a film like Mujhse Shaadi Karogi, no chance at all. Yeah. But yeah, happy 22nd anniversary to the film that made us thaake maar maar ke haso in the cinema hall. It's the 30th of July. This is The Big Mix. And what is the most memorable part about Mujhse Shaadi Karogi? In case you have a memory, share it with me. 054-309-1062. This is Big 106.2 and we are the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यार, जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड आफ्टरनून, 4:06।
1: Bollywood.

This is the Big Mix with me, Sid, on Big 106.2. And kuch din pehle, I did a special on which movies you could expect in August, which movies are we looking forward to in the month of August, jo ki bas ab do din dur hai. And jahan maine badi badi releases ki baat to ki, usme ek is list mein ek aur naam main add karna chahta hu, because the trailer of this film released a few hours ago. Is film ka naam hai Aryabhatt ka Zero. Now, देखो टाइटल जो होता है ना फिल्म का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात प्रूव हो गई इस फिल्म से. एज सून एज आई से आर्यभट्ट का जीरो नाम की एक फिल्म है, इंस्टेंट क्यूरियोसिटी है ना यार, मतलब पहला काम तो हो गया, पहला पड़ाव जैसे कहते हैं बच्चन, वो आपने पार कर लिया. एंड देयर इज क्यूरियोसिटी. इस फिल्म में रवि किशन भी हैं, हिमांशु कोहली, दिस लेडी कॉल्ड सोनाली सहगल का चेहरा आप देखेंगे पहचान जाएंगे किसकी बात कर रहा हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका ट्रेलर है. लंबा चौड़ा ट्रेलर रिलीज हुआ फ्यू आवर्स अगो, सो इसके बारे में कुछ देर में बात करने वाले हैं. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. रिलीज डेट इस फिल्म की है 7th of August. दिस इज बिग 106.2 एंड वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Kia. Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज द बिग मिक्स विद मी सेड. एंड हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम अबाउट आर्यभट्ट का जीरो, एक फिल्म के बारे में. अगर आपने नहीं सुना है तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ, मैंने भी नहीं सुना था. बट देन द ट्रेलर लॉन्च्ड अ फ्यू आवर्स अगो एंड द फिल्म का नाम ही इतना इंट्रीगिंग है, लाइक यू टॉकिंग अबाउट लास्ट टाइम कि यू हैव टू, यू आर फोर्स्ड टू वॉच द ट्रेलर. यार देखे तो सही कि इतना इंटरेस्टिंग नाम है, तो ट्रेलर भी इंटरेस्टिंग है कि नहीं. आर्यभट्ट का जीरो का ट्रेलर साउंड समथिंग लाइक दिस.
2: कल का कुछ सोचा है?
3: कल क्या
2: है? चौथा है मेरा.
3: IAS बनना है मुझे.
2: क्या बनना है?
4: दिमाग तो तेजी है इसका, बस पढ़ाई में मन नहीं लगता. अब देखो इस बार कोशिश करो तो क्या पता हो ही जाए.
2: तुम जैसी मम्मियों की गलत फहमी की वजह से ना ऐसे बच्चे बर्बाद होते
1: हैं. तुम जैसी मम्मी. नाइस लाइंस, गुड मोमेंट्स इन दैट वेरी बरेली की बर्फी, दम लगा के हईशा वाला जोन है. इफ यू एंजॉय दैट देन दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म दैट यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू. आर्यभट्ट का जीरो ये 7th of August को रिलीज होने वाली है, स्टारिंग रवि किसनवा एंड हिमांश कोहली एज वेल. सोनाली सेगल इसके अंदर हैं एंड सम फेमिलियर फेसेस एज वेल. सो 7th of August एक्सपेक्ट आर्यभट्ट का जीरो, वन फिल्म टू वॉच आउट फॉर. जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी लास्ट टाइम अबाउट द फिल्म्स टू वॉच आउट फॉर इन ऑगस्ट, उस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: to the beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: Oh, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
0: ये सुनो।
4: एक ऐसी फिल्म जिसमें बिल्कुल कोई रिलैक्सिंग मोमेंट नहीं था, यू नो, इसके एक्शन सीक्वेंसेस वर इंस्पायर्ड बाय क्लासिक हॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2, मिशन इम्पॉसिबल 2।
5: और इसमें इतना सारा नहीं था कि आई एम नॉट रॉन्ग देन।
4: नहीं नहीं नहीं,
5: आई माय लव ने दिख रहा है।
4: आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार, ये सब मिशन इम्पॉसिबल, टर्मिनेटर, ये सब क्या है इस फिल्म के सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पानी कम चाय। कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं?
5: जानी दुश्मन, एक अनोखी प्रेम कहानी।
4: किसने मारा तुम्हें?
6: इसने।
4: आई थिंक सोनू निगम को कोई तो अवार्ड इस फिल्म के लिए मिलना चाहिए यार, व्हाट डू यू थिंक?
5: एक्चुअली ही डिड इट एटलीस्ट 5 फिल्म, तो उसमें एक पिक्चर में तो अवार्ड मिलता ही है उसका। इसमें ऑलमोस्ट लाइक इफ यू कैन से एवरी वीकेंड इंडिया में री सिनेमा पे जानी दुश्मन का एंड सोनी मैक्स पे अपना अमिताभ बच्चन का इस मूवी था सूर्यवंश, खीर वाला।
4: खीर वाला सीन और ये जानी दुश्मन में तो खीर के बहुत सारे सीन थे, मतलब इसका इससे अच्छा सीन हुआ ही नहीं है कभी बॉलीवुड।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है एट द यूजुअल हॉटस्पॉट्स, उल्टी दिशा में उल्टा मेरे लिए, बिकॉज सुबह नॉर्थ टू साउथ होता है, अब साउथ टू नॉर्थ होता है। सो हेडिंग टुवर्ड्स शारजा फ्रॉम दुबई, ट्रैफिक यू विल फाइंड एट द यूजुअल E11, 311 एज यू गो टुवर्ड्स सिटी सेंटर मिर्दिफ ऑन 311, एंड देन शेख जायद रोड पर ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। ऑल्सो बिट ऑफ कंजेशन मीडिया सिटी गोइंग नॉर्थ, एंड देन अलखेल रोड पर भी हेडिंग टुवर्ड्स शारजा राइट एज यू क्रॉस रसल खोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन। इन केस यू स्पॉट समथिंग, गिव मी अ कॉल, द नंबर इज 800-1062।
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: और इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए. यू लिसन टू मी 4 घंटा सुबह, 4 घंटा दोपहर, या डबल शिफ्ट आजकल मैं कर रहा हूँ टिल द 14th of August. द बिग मिक्स में कल सुबह एक बार, कल दोपहर को एक बार फिर मिलूंगा. बट कुछ घंटों में आपसे मुलाकात होगी कल सुबह एट 7 o'clock. द शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. इन द मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. 106.2 बिग FM वो हमारा इंस्टा हैंडल है, एंड यू कैन फॉलो मी. आई एम सिड सेठ, SIDSETH. टिल टुमारो, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर थर्सडे. बाय बाय.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi, finally 30th of July. मैंने कहा ना मार्च और जुलाई एक जैसा ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. फिलहाल एक दिन और बाकी है. And of course, weekend के लिए भी एक दिन बाकी है. All set to keep you company here until 9. मैं हूँ मानसी. एंड पता नहीं दो दिन से ना मेरी राइट हैंड में खुजली हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी पैसा आने वाला है अगर आपका राइट पाम जो है इट्स इची. दैट मीन्स इनकमिंग कैश. कहाँ से आ रहा है यार? मुझे तो नहीं मिला. मतलब पिछले हफ्ते भी दो तीन बार खुजली हुई थी. खर्चा ही खर्चा हो रहा है. कुछ कंट्रीज में कहा जाता है यू आर अबाउट टू मीट समवन न्यू, मतलब शेकिंग हैंड्स विद अ स्ट्रेंजर. ये भी नहीं हुआ मेरे साथ. तो अब देखते हैं पैसा आता है या फिर कोई नई मोहब्बत. फिलहाल किक स्टारिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 5:06।
1: Bollywood.

0: की वाट लग गई, एकदम रापची कैसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
9: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
10: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: 38 डिग्रीज, लो जाएगा ऑन 34, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 52% पर।
10: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट अपने कार के एसी

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह Big Thrill Mansi. Thursday की शाम है, weekend का बेकरारी बेसब्री से इंतजार है, but जब आप घर जाते हैं 5 से 6 हम यहाँ पे माहौल बनाते हैं, महफिल सजाते हैं, एंड ऑफ कोर्स गाना आए या ना आए हम डेफिनेटली गाते हैं.
1: Karaoke.
2: ये एक लौता प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द बाथरूम सिंगर्स के अपने टैलेंट को बाथरूम से बाहर निकालो और भी लोग भी तो जो हैं वो देखें, वो सुने कि आप कितना कितना सुर में गाते हैं. फिलहाल आज सोनू निगम का बर्थडे है एंड ऑफ कोर्स वी नो ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सोनू निगम के गाने को बिगाड़ते हैं. नहीं, अगर आप बाथरूम में गाते हैं तो आप यहाँ भी गा सकते हैं. एंड मैंने कल भी कहा था कि बाथरूम सिंगर्स ढूंढते ढूंढते कई प्रोफेशनल सिंगर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो अगर आप भी कैरियोके का शौक रखते हैं, आज शाम सोनू निगम की ही आवाज में ये ट्रैक. हाँ, बहुत मजा आएगा इसे बिगाड़ने में. अगर आपने गेस कर लिया है कौन सा गाना है, ऑफकोर्स बर्थडे बॉय सोनू निगम का ही. एंड अगर आप यहाँ गाने की जहमत उठाना चाहते हैं, गिव मी अ कॉल ऑन 8 1 0 6 2, लुकिंग फॉर माई कारियोके किंग और क्वीन.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल मानसी एंड पांसी चे। हम यहाँ पे महफिल जमाते हैं, आप गाते हैं, मैं आपको ऑडियंस देती हूँ, कभी कभार आप मेरी ऑडियंस भगा भी देते हैं।
0: Karaoke
1: The only platform for bathroom singers to host their concert. आवाज आपकी, ऑडियंस मेरी। आ चुके हैं समीर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
2: एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
1: कैसा रहा थर्सडे?
2: थर्सडे तो अभी फिलहाल गर्मी में 48 तो कार में बता रहा था।
1: एसी नहीं चलाते हो क्या? पेट्रोल बचा रहे हो?
2: नहीं, एसी चलाते हूँ यार, लेकिन काम नहीं कर रहा है आजकल। क्या
1: तो ठीक कराओ एसी, ऐसा मतलब मत करो अपने साथ इतनी गर्मी में अत्याचार। फिलहाल समीर आप करते क्या है?
2: वैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग।
1: अरे वेरी वेरी नाइस, हैशटैग किंग। ट्रेंड कौन सा चल रहा है आजकल?
2: आजकल ट्रेंड तो चल रहा है नौकरी बचाओ।
1: नौकरी बचाओ,
2: माय बॉस इज कूल।
1: नौकरी बचाओ, माय बॉस इज कूल। हाउ डू आई नॉट नो अबाउट दिस ट्रेंड? मैं भी फॉलो करूंगी, नौकरी बचाओ, माय बॉस इज कूल। माय बॉस एक्चुअली इज वेरी वेरी कूल। लोग सोचते हैं कि मैं बॉस की चमची हूँ, बट वेरी वेरी कूल बॉस। फिलहाल समीर, गाना वाना गाने का शौक रखते हो आप?
2: हाँ, थोड़ा बहुत गाने खराब करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया, आज सोनू निगम का गाना खराब करेंगे। मतलब इससे बड़ा मौका मिलेगा नहीं आपको कि सोनू निगम के बर्थडे पे आप उन्हीं का गाना खराब कीजिएगा, ठीक है? इतना भी खराब मत करना सर कि मुझे मेरी नौकरी बचानी पड़े। आपका ट्रैक है
2: Mm-hmm.

0: मुझको सब कुछ पता है, आ करो क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझे से ये तुम्हारी खता है। हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो।
1: वाह, पूरा रटा हुआ आपको तो। कमाल गाय समीर जी, किस किस को सुना चुके हो मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो?
2: अभी बस पुराने जख्मों पे मरहम नहीं लगा था।
1: मैं नमक छिड़कने का काम करती हूँ सर, मरहम नहीं लगाती हूँ। बट बहुत अच्छा गाया समीर आपने, एंड जिसके लिए गाते थे उसकी शादी हो गई है कि सिंगल है वो भी? बस इतना बता जाओ।
2: दूसरे दो दो बच्चे उसके।
1: अरे समीर जो है वो मामा बन गए। मामा जी ने गाना बहुत अच्छा गाया है अपनी यादों में। बट थैंक यू सो मच समीर, वेरी वेल सॉन्ग।
2: थैंक यू सो मच यार, थैंक यू,
1: बाय बाय। यही है कैरियोकी, अगर गाड़ी में बैठे बैठे आपका भी दिल कर रहा है कि मैं भी ये गाना गाऊं, आज सोनू निगम का बर्थडे है, बस फोन उठाओ लगाओ 800-1062 पर।
3: कैरियोकी Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हमारी ऑडियंस यहाँ नहीं दुनिया में है. वी आर ग्लोबल विद द कारियो के. आई जस्ट गॉट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम नीसा. इन्होंने अपने नाम से एच हटा के डबल ए क्यू लगाया, ये तो यही बता सकते हैं. शायद इसलिए ये यूके में बैठी हैं एच हटा के डबल ए लगा के. सो नीसा सेज आई लव कारियोकी एंड आई वुड लव टू सिंग दिस सॉन्ग. हाउ डू आई कनेक्ट? देखो, आप पाउंड्स में कमा रहे हो तो कॉल कर लो 800-1062 पे, या फिर आप व्हाट्सएप करके अपना गाना मुझे भेज सकते हो 0543091062 पर. दिस इज व्हाट वी डू. 5 से 6 हम गाने गाते हैं. प्लेटफॉर्म है एक्सक्लूसिवली फॉर बाथरूम सिंगर्स. और आज तो सोनू निगम का बर्थडे है, तो नीसा तो यूके में बैठी हैं, तो इनके तो पाउंड खर्च होंगे. बट अगर आप गाना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. टोल फ्री नंबर है 800-1062. एंड सोनू निगम के बर्थडे पे ट्रैक है

अब ये इतना अच्छा गाना है कि इसे बिगाड़ने में मजा बहुत आने वाला है। वैसे अभी समीर ने गाया, उन्होंने बिगाड़ा नहीं। अगर आप भी गाना पहचान गए, यू आर सोनू निगम फैन, यू आर फैन ऑफ कारियोकी, अगर दोस्त आपको माइक नहीं देते हैं, मैं आपको माइक देने वाली हूँ। 800-1062 इज द नंबर टू डायल।

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: थर्सडे की शाम है, गाने गा रहे हैं, मतलब आप गा रहे हैं, मैं आपको ऑडियंस दे रही हूँ. इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी एंड काफी थके थके से हैं सर. क्या हुआ
2: जी? हेलो.
1: नहीं हेलो तो है, बट हुआ क्या है आपको?
2: कुछ भी नहीं. ऑफिस से निकला, थोड़ा टाइट हूँ.
1: टाइट हो? क्या करते हैं आप? पहले अपना नाम तो बताओ मुझे.
2: मेरा नाम हिशाम है.
1: हिशाम, टाइट क्यों हो?
2: सेल्स में हो ना, नेचुरली गाड़ी ड्राइव, इधर उधर इधर मारे मारे फिरना है ऑर्डर.
1: ओहो, कैसा चल रहा है? टारगेट हुआ नहीं हुआ?
2: नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है.
1: बस सर, टारगेट होते रहना चाहिए. आप गाना वाना गाते हो? नहीं गाते हो?
2: नहीं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, बस वो गाना बहुत पसंद है.
1: तो सर क्यों ऐसा कर रहे हो कि यहाँ से मुझे भी फिर भगा दिया जाए?
2: मैं एक प्रोग्राम हुआ था दिवाली फेस्टिवल, उसमें पार्टिसिपेट करे थे.
1: अच्छा,
2: बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था वो.
1: अब एक जबरदस्त प्रोग्राम आप करोगे यहाँ पे. सोनू निगम के फैन है आप?
2: हाँ.
1: गाना भी आपने पहचान लिया, तो आज उनका बर्थडे है, तो दो लाइन
2: ठीक है. मुझे रात दिन मुझे
1: सॉरी आप सुना
2: याद था, लेकिन आप ये फर्स्ट टाइम वाला. मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, बताती नहीं हो, ये तुम्हारी खता है, करूं क्या मुझे.
1: काफी टाइट हो सर, आज आप बहुत ज्यादा टाइट हो. आपके बाकी पब्लिक भी टाइट हो रही है.
2: मूड खराब कर दिया.
1: नहीं नहीं, देखो मेरा मूड तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता नहीं है, मैं जब गाती हूँ ना तो लोग जो है पानी पीते पीते पानी बाहर निकालते
2: हैं. मैं आपका ना वो बोल रहा था, स्पोर्ट्स सिटी में एक ओपन गार्डन में प्रोग्राम होता दिवाली फेस्टिवल का. बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग. मुंबई के दो तीन एक फैमिली, पूरी फैमिली नाचती थी. पापा भी नाच रहे, मम्मी भी नाच रहे, बच्चे भी नाच रहे, तो मैं भी उसमें शुरू हो गया.
1: बहुत बढ़िया सर, आपने गाया भी बहुत अच्छा है. वो थोड़ा आज क्या है, थक गए हो आप?
2: नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन
1: उठाया. मुझे बात बताओ ना, गाना जब सुनते हो तो किसकी याद आती है?
2: नहीं असल में अब क्या बताए, वैसे मेरी शादी लव मैरिज ही हुई है,
1: पर उनके लिए
2: लेकिन ये और बात है कि जी और बात है कि वो लव मैरिज नहीं हुई जो फर्स्ट टाइम.
1: अच्छा, पहली मोहब्बत नाकाम. नाकाम ही अच्छी रहती है सर.
2: नाकाम तो नहीं था, बस फैमिली डिस्प्यूट था, घर की बात थी.
1: अब हो गया ना, अभी तो हो चुकी है आपकी शादी.
2: ये बाहर मेरी 94 में शादी हुई है, मेरे तीन बेटा है.
1: 94 की मोहब्बत आप 2026 में याद कर रहे हो, तो बड़ी शिद्दत की मोहब्बत होगी. तो बस आज घर जाके उसी को याद करना, ये गाना बार बार सुनना. हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
1: बाय बाय.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। देख।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, main hoon Mansi. Gaane sunke maza aaya, ab aur maza aayega. This hour of the show, we play this fun game. It's called the 5-second rule. Aapko milte hain 5 second. Main aapko deti hoon kuch categories. Teen cheeze batani hoti hai 5 second ke andar fatafat. Pata hai mujhe. बहुत इजी साउंड करता है, बट जितनों ने भी खेला है उन्होंने कहा है कि यार इजी नहीं है, बहुत टफ है. तो अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हैं, यू कैन क्रैक इट इन 5 seconds. गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mumsy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह बिग थ्रिल मानसी एंड ऑफ कोर्स शगुन कर दिया है शगुन ने कॉल करके. हाय शगुन.
3: हेलो.
2: हाउ आर यू? कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? हवाओं की आवाज आ रही है.
3: अभी तो मैं घर जा रहा हूँ ऑफिस से.
2: फिलहाल शगुन, वी प्ले द 5 second रूल. इट इज अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें आपने बतानी है फटाफट 5 second के अंदर.
1: 5 second रूल.
3: Oh yeah.
2: Quickly tell me 3 सलमान खान की मूवीज.
3: प्यार क्या तो डरना क्या. और शादी करोगी.
2: यस.
3: एंड बीवी नंबर 1.
2: वेरी नाइस. 3 थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच.
3: सैंड.
2: और
3: पीपल इन बिकिनी.
2: क्या?
3: एंड वाटर.
2: पीपल इन बिकिनी. अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने ऑफिस के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
3: द लोकेशन. सैडनेस. एंड वर्क.
2: सैडनेस. Sadness. Yes. क्यों है यार ऑफिस में?
3: It's like sometimes whenever it is sad, the whole atmosphere whenever it is sad, वो अच्छा नहीं लगता.
2: Alright, moving on. 3 ऐसे गाने हैं जिनमें दिल आता है.
3: दिल धड़कने दो.
2: और
3: दिल विल प्यार व्यार.
2: हैं.
3: दिल तो पागल है.
2: 3 things that are made out of milk.
3: Milkshake, curd, paneer.
2: I have to say, Shagun. Blowing. This is how you play this game and you aced it literally.
3: Can I tell you something?
2: Haan.
3: Can I tell you something?
2: हाँ, ये ऑफिस में खिलाते हो क्या?
3: Like probably last month मैंने एक बार आपको कॉल किया था.
2: हाँ.
3: And I failed miserably and you actually told you are the worst caller ever.
2: अरे तो दिल पे लग गई क्या? प्रैक्टिस की?
3: तो तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैं तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ.
2: यार शगुन. बट आज तो मतलब कमाल कर दिया है शगुन ने. ऐसा एक जवाब नहीं है जो शगुन नहीं दे पाए. तो मतलब प्रैक्टिस आपकी काम आई है. एंड कंग्रेचुलेशंस. आई थिंक सो फार इस हफ्ते में अगर किसी ने ये गेम अच्छे से खेला है 5 second रूल, वो शगुन है अभी तक. सो थैंक यू सो मच शगुन.
3: थैंक यू. बाय.
2: ये 5 second रूल अगर आपने खेलना है तो एक ही रूल है, मुझे कॉल करना है 800-1062 पर.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा।
0: Yes or no?
3: एक ऐसी फिल्म जिसमें बिल्कुल कोई रिलैक्सिंग मोमेंट नहीं था. You know, इसके एक्शन सीक्वेंसेस वर इंस्पायर्ड बाय क्लासिक हॉलीवुड मूवीज जैसे कि मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2, मिशन इम्पॉसिबल 2.
4: और इसमें इतना सारा नहीं था कि आई एम नॉट रॉन्ग देन.
3: नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार. ये सब मिशन इम्पॉसिबल, टर्मिनेटर, ये सब क्या है इस फिल्म के सामने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं. पानी कम चाय. कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं?
4: जानी दुश्मन, अनोखी प्रेम कहानी.
3: किसने मारा तुम्हें?
2: इसने.
3: आई थिंक सोनू निगम को कोई तो अवार्ड इस फिल्म के लिए मिलना चाहिए यार. व्हाट डू यू थिंक?
4: एक्चुअली ही डिड इट एटलीस्ट 5 फिल्म, तो उसमें एक पिक्चर में तो अवार्ड मिलता ही है उसका. इसमें ऑलमोस्ट लाइक इफ यू कैन से एवरी वीकेंड इंडिया में री सिनेमा पे जानी दुश्मन का एंड सोनी मैक्स पे अपना अमिताभ बच्चन का इस मूवी था सूर्यवंशम, यस, खीर वाला
3: सीन. और ये जानी दुश्मन में तो खीर के बहुत सारे सीन थे. मतलब इसका इससे अच्छा सीन हुआ ही नहीं है कभी बॉलीवुड.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
7: It is 37 degrees, low jayega around 35. Filhal humidity hai 55%, that is 55% par.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Thursday ki sham, we're playing the 5-second rule. Aa gayi hai Poonam. Jal lijiye na. Samajh gayi mera reference?
2: Nahi.
1: Are yaar, vivah.
2: अच्छा,
1: नहीं देखिए आपने क्या यार, मेरा पूरा फिल्मी रेफरेंस फेल हो गया।
2: पूनम
1: हाँ, है आप भी पूनम जैसी, जल ले लीजिए ना।
2: हाँ, जल ले लीजिए।
1: पूनम क्या करते हो आप?
2: बेसिकली टीचर हूँ, बट अभी ब्रेक लिया हुआ है, बच्चे
1: पाल रही हूँ। वेरी नाइस, बच्चे पाल रही हूँ। आई लाइक हाउ ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड दिस पूनम इज। ओके पूनम, विल प्ले दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5-second रूल। इट्स अ फन गेम, आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मैं आपको कुछ कैटेगरीज दूंगी, 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर, ठीक है? ओके,
0: 5-second रूल।
3: ओह यस।
1: 3 शाहिद कपूर की मूवीज।
2: इश्क वेश्क
1: और
2: कमीना हैदर।
1: दूसरा क्या
2: हैदर?
1: दूसरी क्या थी?
2: Not bad at all.
1: 3 ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलती हैं।
2: ट्रॉली
1: और
2: चेकिंग काउंटर।
1: अच्छा,
2: एंड एयर होस्टेसेस।
1: ओह वेरी नाइस, हाजिर जवाब है ये पूनम। 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें हम आता है, द वर्ड हम।
2: हम
1: हम
2: हम तेरे प्यार में
1: है?
2: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
1: खत्म हो गया, 5 सेकंड का आलम था,
2: हम तुम पे मरते हैं।
1: हो गया कब का 5 सेकंड खत्म।
2: Sorry.
1: 3 things that if you could, you would change about your husband.
2: Oh my God, there are so many.
1: 3 बता दो बहन।
2: Shopping spree, and then spending some time with me, and going out frequently with me.
1: तो he is not going out frequently with you, why?
2: Yes, वो opposite मिल गए ना, पूनम और वो वाला प्रेम नहीं मिला actually.
1: आज सोनू निगम का बर्थडे है, 3 सोनू निगम के गाने।
2: ये दिल दीवाना।
1: वेरी नाइस।
2: दीवाना मैं हूँ दीवाना।
1: वेरी नाइस। ओही, टाइम खत्म हो गया। 3 थिंग्स दैट आर येलो इन कलर एंड आप खा सकते हो।
2: ऑरेंज,
1: येलो,
2: गुआवा,
1: मेलन। कौन सा गुआवा येलो कलर का होता है? वो ग्रीन कलर का होता है पूना।
2: येलो मिलता है इंडोनेशिया।
1: देखो ये इम्पोर्टेड फ्रूट्स खा रही है और फिर कह रही है कि मैं बच्चे पाल रही हूँ। ठीक ठाक खेला, 2-4 जवाब टाइम पे थे, बाकी तो सारे मिस हो गए। बट पूनम, आई हैव टू से वेरी वेरी अनफिल्टर्ड, आई लव इट।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू, इवन यू आर रियली रियल फन।
1: थैंक यू सो मच, एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग। एंड हस्बैंड प्लीज फ्रीक्वेंटली बाहर लेकर जाओ, क्योंकि ये बहुत अनफिल्टर्ड है। अगला मतलब गोविंदा की बीवी के बाद पूनम ही है। चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग।
2: थैंक यू, टू यू टू, बाय
1: बाय। ये 5-second रूल, अगर आपने खेलना है, एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर।
0: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill keeping you company here until 9. Mansi, we're playing the 5-second rule. It's a fun game. आपने सुना अभी शगुन एंड पूनम को आपको मिलते 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. एंड इफ यू वांट टू प्ले 800-1-0-6-2 इज द नंबर टू डायल. ऑल्सो आज शाम को मैंने कहा था ना कि मेरे राइट हैंड में खुजली हो रही है, तो चैट जीपीटी जो है वो देसी लोगों को पहचान लेता है क्योंकि प्रॉम्प्ट्स ऐसे ना, तो वो कह रहा है पैसा आएगा, नया प्यार आएगा, बट ऐसी बहुत सारी विदाउट लॉजिक जो है चीजों पे हम देसीज बिलीव करते हैं, जैसे चप्पल उल्टी हो जाए, कैंची चलाना तो लड़ाई हो जाती है. सो आज शाम ये भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. आई रिमेम्बर एज अ किड, अगर मेरे ऊपर से कोई निकल जाता था मैं उनसे 3 बार बोलती थी ऊपर से निकलो वरना मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी.
2: Coming
1: up, break your spar right here on the Big Thrill. मैं हूँ मानसी.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी। आपको पता ही है आज सोनू निगम का बर्थडे। ऑफकोर्स सोनू निगम ने हमें बहुत सारे हिट्स दिए हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल बॉलीवुड नंबर्स, बट ओनली द ओजीज 90s किड्स वुड रिमेंबर दिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब मुझे रात दिन या दीवाना मैं दीवाना। एक एल्बम आई थी सोनू निगम की जो बिड्डू ने जो है उसमें म्यूजिक कंपोज किया था। चैनल वी एमटीवी के दिन याद करते हैं। लेट मी सी ऑल माय फेलो मिलेनियल्स, क्या आपको ये याद है?

इस गाने में बिपाशा बासु भी थी वे बिफोर शी जॉइंड द इंडस्ट्री. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस. इस गाने का टाइटल क्या था? मतलब बहुत सारे उस जमाने में स्कूल में हमारी क्लास के लड़के इस गाने पे डांस भी करते थे उल्टी टोपी लगा के. अगर आपको याद आ गया है, एल्बम था किस्मत एंड बिडू ने म्यूजिक दिया था. चैनल वी एमटीवी के दिन 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल मानसी। एक दिन और फिर तो वीकेंड आई जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अबाउट रैंडम थिंग्स दैट हैव नो लॉजिक एट ऑल, बट हम देसीज उन्हें मानते हैं। जैसे आज मैंने आपसे कहा कि मेरे राइट हैंड में खुजली हो रही है, मैं ऑफिस आई तो किसी ने कहा कि मैंने अपनी जुबान काट ली है, तो मैंने इमीडिएटली बोला कि कोई आपकी बुराई कर रहा था। जब आपकी कोई बुराई करता है तो आप अपनी खुद की जुबान काट लेते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चप्पल उल्टी रखी तो लड़ाई होगी, कैंची चली तो लड़ाई होगी, एंड ऑफकोर्स आपके ऊपर से कोई चला जाए देन आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कढ़ाई में से खाना खाया तो शादी में बारिश होगी, और हर घर के ना स्पेसिफिक ऐसे नॉट सो लॉजिकल रीजनिंग्स होती है। तो आपके घर में ग्रोइंग अप आपने ऐसे कुछ रीजंस, ऐसे कुछ बिलीफ्स जो है वो सुने हैं, तो आज वही शेयर करने वाले हैं इंस्टाग्राम पे भी। यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन 800 1062 और गेट इन टच विद अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग एफएम इट इज।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी द टाइम राइट नाउ 7:07।
1: Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: नमस्ते।
5: ओला।
4: अस्सलाम वालेकुम।
6: बोंजूर।
7: नी हाओ।
6: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
8: InsuranceMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. InsuranceMarket.ae.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली
10: है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अब ना 3 दिन से मेरे राइट हैंड में खुजली हो रही है एंड कंटिन्यूसली नहीं हो रही है बट पिछले हफ्ते हुई थी, आज शाम हुई. टेक्निकली अकॉर्डिंग टू व्हाट आई ग्रू अप लिसनिंग पैसा आना चाहिए बट आया नहीं. बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी ग्रू अप लिसनिंग दैट वी बिलीव्ड एंड वी स्टिल बिलीव बट इसमें कोई लॉजिक नहीं है. इनफैक्ट ये खाली देसी घरों में नहीं होता है. आई वॉज रीडिंग कि टर्की में अगर आपके बर्थडे से पहले कोई आपको हैप्पी बर्थडे बोल दे, मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो इट ब्रिंग्स यू बैड लक. राइट नाउ वी हैव गौरव. हाय गौरव.
2: हाय मंसी, हाउ आर यू?
1: गुड. कैसा रहा थर्सडे?
2: Wonderful, awesome. Just heading to the weekend is another feeling.
1: I know, right? But ये ना लम्हे कटते नहीं है Thursday से Friday तक के, बहुत लम्बे होते
2: हैं. Actually, और Friday से Sunday ऐसा कट जाता है कि पूछो ही मत.
1: वो ही ना अच्छा time. बहुत जल्दी गुजर जाता है. फिलहाल गौरव में बात कर रही थी चीजें दैट वी ग्रू अप बिलीविंग एंड वी स्टिल बिलीव, क्योंकि बचपन से हम वो सुनते आ रहे हैं जो हर देसी घर की एक स्पेशल होती है. तो आपके घर में ऐसा कुछ माहौल था?
2: Actually, we are like 3 siblings in total. So, हम लोग क्या करते थे? We used to create hurdles, human hurdles actually. So, क्या करते थे? हम jump करते थे. They were like, you know, there was my brother and sister. There used to be a gap in between. एक hop करते थे, फिर दूसरा hop करते थे. Then we used to do it one time over both of it.
1: हाँ.
2: So, एक बार मम्मी ने देख लिया तो दादी थी उस time. I was lucky enough to see my grandmother. So, she told me, don't do this at all because, you know, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा एंड ऑल दिस, नहीं करना चाहिए.
1: मैं भी मानती थी, यू नो माय ब्रदर यूज्ड टू डू इट पर्पसली. जहां भी मैं उसको बैठी लेटी दिख जाऊं मेरे ऊपर से निकल जाता था और मैं बोलती थी फिर से निकल, मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी. तो आई थिंक ये हर देसी घर का है. बट आप लोग तो भाई हर्डल्स बनाते थे, खतरों की खिलाड़ी मतलब घर में बनाया हुआ है. बट बहुत सारी चीजें होती है जिनमें कोई लॉजिक नहीं है. छींक आ जाए तो बस अब बैठो, 10 मिनट बाद घर से निकलना, पानी पी के जाना.
2: वाली भी बेस्ट है, यू नो, व्हेन यू हैव हिचकी, व्हेन यू हैव हिकअप्स, देयर वाज दिस थिंग, यू नो, कि आप 7 बार वो छोटा छोटा पानी का घूट पी लो. इट रियली वर्क्स बाय द वे, नो लाइक नथिंग इज रिक्वायर्ड.
1: उसका भी लॉजिक है ना कि कोई याद कर रहा है आपको.
2: या कोई याद कर रहा है आपको, दैट्स ट्रू. तो 7 बार पीने से शायद वो याद कम हो जाता है. नो
1: बट पता है बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर जो है वो इतना एनग्रेव हो चुका है. क्योंकि आज आई रिमेम्बर कमिंग टू वर्क एंड कॉलीग सेड कि यार मैंने अपनी जुबान अपनी जीभ काट ली है. मैंने बोला जरूर आपकी कोई बुराई कर रहा होगा. वो कहता बुराई भी मेरी हो रही है और तकलीफ भी मुझे हो रही है. प्रॉब्ली ही डिडंट बिलीव. आई सेड ऐसा होता है, हम तो ये मानते हैं अगर आपने जीभ काट ली मतलब आपके बारे में कोई कुछ बुरा बोल रहा था. बट आई थिंक ओनली देसीज वुड अंडरस्टैंड. एंड
2: एक्चुअली आई डू दिस विद माय किड एज वेल. जो मुझे मतलब बोला गया तो आई लाइक डू द सेम थिंग ऑन माय किड की नहीं ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा.
1: चप्पल सीधी करवाते हो उससे?
2: हाँ जी,
1: चप्पल सीधी करवाते हो कि लड़ाई हो जाएगी मेरी और मम्मी की?
2: चप्पल सीधी करवाते. चप्पल के ऊपर अगर चप्पल रखा रहे तो वो पंगा है. तो ये तो मतलब घर का क्लेश तो नॉर्मल है.
1: तो हर घर का कोई ना कोई लॉजिक होता है. बट आई थिंक कुछ बातें जो है वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहती हैं. जैसे वो कहते हैं ना कि कढ़ाई से सीधा खाना नहीं खाना है. मम्मी कहती कढ़ाई से सीधा खाना मत खा, तेरी शादी में बारिश होगी.
2: शादी में बारिश होगी,
1: यहाँ शादी नहीं हो रही है, कढ़ाइयों से खाने खा के थक गए.
2: हम दुआ करेंगे आपके लिए.
1: नहीं नहीं नहीं, थैंक यू जी. जितनी मैंने लोगों की सुनी है मैं बहुत खुश हूँ. मेरे को अपनी चप्पलें उल्टी नहीं सीधी नहीं करानी है. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग गौरव. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू टू. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
1: अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ था, यू नो, लॉजिक जिसके पीछे ऑनेस्टली कोई लॉजिक था नहीं बट इट्स अ देसी हाउस होल्ड थिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर.
0: बिग 106.2
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. The Big Jill.
4: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
1: हाँ जी, स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको मिलने वाला है अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं. नॉट रियली बैड, दो 18 मिनट का डिले है फिलहाल. देयर स्टिल स्लो मूविंग ट्रैफिक, 26 मिनट डिले ऑन शेख जायद बिजनेस बे DIFC. वेरी वेरी स्लो मूविंग डेरा से इफ यू गोइंग टू शारजा नहादा तक बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है. डिस्पैची ट्रैफिक नियर ऊद में था एट द मोमेंट एंड थोड़ा बहुत ही सही. नॉट रियली बैड, 8 मिनट का डिले फिलहाल ऑन द हेस स्ट्रीट. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

You know, there are certain songs जो आपको original singer या movie की याद नहीं दिलाते हैं, but जिससे वो associated है उसकी याद दिलाते हैं. जैसे ये गाना for all those who know, सिर्फ और सिर्फ मुझे अर्शी खान की याद दिलाता है. If you are a fellow reality show obsessed human, then I'm sure you understand. वैसे आजकल I'm literally obsessed with the lockup. If you're watching the show, oh my god, it is fantastic. I am such a big fan of Shilpa Shinde. In fact, मैं Big Boss के time भी Shilpa की team में थी, and अब भी. मतलब श्रेया और शिल्पा मिलकर जो कलेश करते हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसी टीम मेरी भी बने at work. And I was such a big fan of Ram Kapoor, but मेरा perception change हो गया Ram Kapoor के बारे में after watching this show. To be honest, if you like reality TV, please watch Lock Up. बहुत ही कलेशी है, बहुत ज्यादा ड्रामा है. एंड रितेश देशमुख, आई थॉट आई विल नेवर से दिस, बट ये सलमान खान से बेटर होस्ट है. Coming up, break your spar right here on The Big Thrill. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Growing up as a millennial, we used to love watching music videos, especially MTV, Channel V Pay, those indie pop music videos, right?
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And if you grew up in the 90s, agar aap fellow millennial hain, then you should know ke Sonu Nigam ne hame kamal aisi independent albums diye hain with some great models, but there was a time when he was the model himself. Album ka naam Kismat, aapne bhi cassette khareeda hoga back in the 90s. Bipasha Basu, way before she joined the industry, she was a model is gaane mein. Sonu Nigam ke bahut popular gaane hain. Agar hum private albums ki bhi baat kare, ab mujhe raat din, deewana tera, is kadar pyar hai, but I don't know kitno ko ये गाना याद है. बिडू ने जो है वो म्यूजिक कंपोज किया है एंड बिपाशा बासु लुकिंग स्टनिंग. सोनू निगम क्वेश्चनेबल आउटफिट चॉइसेस एंड आई थिंक ये बड़ा अंडररेटेड गाना है. सोनू निगम का ही गाना है. आज सोनू का बर्थडे है, सो लेट मी सी कौन है सोनू निगम का इतना बड़ा फैन जिसे ये गाना भी याद है. आई रिमेंबर दिस सॉन्ग बिकॉज मेरे स्कूल के बहुत सारे लड़के इस गाने पर डांस करते थे. आई डोंट नो व्हाई, बारिश में सोनू निगम ट्राइंग टू डांस साथ में बिपाशा बासु. अगर याद आ गया 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
1: बिग 106.2.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 The beat of Bollywood.
2: Hello.
3: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
4: Hey,

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Celebrating the man who's given us a massive, massive hits. Romance sounds so much better Sonu Nigam ki awaaz mein. In fact, bahut sare popular gaane to hain. Ye gaana not so popular hai jo maine aapko sunaya tha, Bipasha Basu. And of course, album ka naam Kismat tha. बिडू ने जो है वो म्यूजिक कंपोज किया था. इमरान इज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे कॉल किया है. हाँ जी,
3: यस, द सॉन्ग इज टू कब ये जानेगी.
2: बट ये गाना इतना पॉपुलर हुआ नहीं.
3: सी, देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर इन यू नो टीनेज एंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस आर हाई एंड ऑल द सॉन्ग्स एंड म्यूजिक यू हियर यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम.
2: 100% ये सारे फीलिंग्स इमोशंस अगर आप टीनेज में थे तो नॉट फॉर सोनू निगम, बिपाशा के लिए होंगे इस गाने में. तो वो बहुत कमाल लग रही थी इन दैट रेड आउटफिट. बट इमरान, आर यू अ फैन ऑफ सोनू निगम?
3: I do.
2: अच्छा, तो चलो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ. मैं आपसे कुछ पूछने वाली हूँ. सोनू निगम के ही गाने हैं, मैं देखती हूँ कि आप गाने पहचान पाते हैं कि नहीं. ठीक है?
3: ओके, प्लीज कैरी ऑन.
2: पहचाना?
3: फिजा.
2: वाह, ओह माय गॉड, ही इज अ फैन. एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज फिजा. सर मैं मान गई हूं, थोड़ा टफ करूं क्या?
3: यू कैन ट्राई इट. आई डोंट नो, माय मेमोरी इज सो स्ट्रांग.
2: नहीं नहीं, दैट वाज फैंटास्टिक. विद इन 4 सेकंड्स यू सेड फिजा. ओके, लेट मी प्ले यू अनदर वन.
3: मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार. मैं
2: यार, सर आई हैव टू से हमारे पास बहुत बड़े फैन आ चुके हैं सोनू निगम के. चलो अब ये ट्राई करते हैं.
3: नो एंट्री.
2: माय गॉड, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड. मतलब आपसे बड़ा फैन मैंने देखा नहीं है. दो दो सेकंड के अंदर ये गाने पहचान रहे हैं. तो मान गई मैं इमरान आपको. चलो, आज सोनू निगम का बर्थडे है. यू आर सच अ बिग फैन. व्हाट सॉन्ग शुड आई प्ले?
3: यू कैन प्ले फॉर मी दिस दीवाना तेरा.
2: दीवाना गाते हो आप? मैं हूँ दीवाना.
3: yes,
2: तेरा मौसम भी. चलो दो लाइन आप गाओ, फिर मैं गाना सुनाती हूँ. चलो दो लाइन आप गाओ, फिर आई एम गोना प्ले द सॉन्ग.
3: दीवाना मैं हूँ, दीवाना तेरा दीवाना, मौसम है मस्ताना,
2: उस पे दिल
3: दीवाना दीवाना तेरा.
2: वो वाला आप ही गाओ, मैं गाऊंगी तो लोग अभी जो है गाड़ी गलत टर्न कर लेंगे. चलो लेट्स प्ले सोनू निगम की आवाज में. विशिंग सोनू निगम अ वेरी हैप्पी बर्थडे.
3: थैंक यू सो मच.
2: बाय बाय.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill Mansi. The weekend is almost here. Weekend पे सबसे बड़ा confusion होता है क्या देखें, and उस confusion को दूर करने we've got the big binge with Sid. Every Saturday, 7 बजे से to guide you, to tell you whether you should skip it or you should binge it. In fact, weekends are also packed. Top 40 biggest hits आप सुनते हैं मेरे साथ with the big Bollywood countdown. And of course, Sid आपको बताता है what to binge and what not to binge. I actually binged मुसाफिर कैफे. मुझे बहुत पसंद है ऐसे शोज जिसमें यू नो एक तरफ आशिकी होती है ना काम मोहब्बत होती है. आई थरली एंजॉय द शो. बट ऑल्सो इफ यू समवन जिसने कभी ना कभी सोचा है कि पहाड़ों पे जाके कैफे खोलेंगे, आई थिंक काफी इंस्पायरिंग है ये शो. सो सिड इज गोना गिव यू अ राइट रिव्यू, अ राइट रिकमेंडेशन ऑन मुसाफिर कैफे. मेरा तो बस एक ही एंगल है कि हाँ दिल टूटा है तो अब मैं ये देखूंगी. फिलहाल सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी मिलेगी, 106.2 बिग एफएम इट इज. इफ यू नॉट फॉलोइंग अस, यू मिसिंग आउट ऑन सो मच फन. गो एंड follow us right now.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगे ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: एंड इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. मैं आपसे मिलती हूँ कल. वीकेंड आ गया. ये थर्सडे से फ्राइडे का सफर बहुत लंबा रहता है, बट फाइनली द वीकेंड इज हियर. एंड फ्राइडे से संडे का सफर ऐसा रहता है कि बस ऐसी स्पीड पकड़ के समझ ही नहीं आता है कब संडे की दोपहर हो गई, ये वीकेंड गया. बट इट्स ओके, वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट. वी थिंकिंग अबाउट गुड टाइम्स, दैट इज टुमारो इवनिंग. आई एम गोना कीप यू कंपनी हियर 5 से 9 अगेन. कल वी विल ब्रिंग इन द वीकेंड टुगेदर. अंटिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाई टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग. मैं आपसे टॉकिंग करूंगी कल. जाते जाते आई एम लीविंग यू विद एक और वरुण धवन का गाना.

0: कैब।
1: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
2: बिग बिग 106.2

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।
4: insurancemarket.ae।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।